ये एक टर्म प्लान का ऐड है, पर इसे स्किप मत करना क्योंकि अगले 30 सेकंड्स में तुम अपनी फैमिली को 2 करोड़ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो, वो भी 30 रुपीज से भी कम में, क्योंकि एक्सिस मैक्स लाइफ दे रहा है 2 करोड़ का कवर, वो भी 30 रुपीज पर डे से भी कम में, तो लेते क्यों नहीं। और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.70% है क्योंकि ये दे रहे हैं क्लेम सेटलमेंट की गारंटी, वो भी सिर्फ 3 घंटे में। तुम लोगों ने अगर ये वीडियो स्किप किया तो नुकसान तुम्हारा होगा क्योंकि एक्सिस मैक्स लाइफ दे रहा है 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट, और अब तो जीएसटी भी

worry. You can now buy high quality replacement display for your original Oppo Reno 3 Pro at a very affordable price from maxpi.com and can fix your phone yourself at home or get it repaired by any professional very easily. जी हाँ दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट maxpi.com से अपने Oppo Reno 3 Pro की नई डिस्प्ले खरीद के अब बहुत ही कम दामों में अपने फोन की टूटी हुई स्क्रीन को सही कर सकते हैं. This amazing contrast and high brightness display touch combo folder is a 100% genuine quality product which works similar to your original display with a perfect fit for your Oppo Reno 3 Pro. इस डिस्प्ले को पहले हमारी क्वालिटी टीम द्वारा चेक और इंस्पेक्ट किया जाता है और क्वालिटी एश्योर होने के बाद ही ये डिस्प्ले आपको भेजी जाती है. साथ ही साथ हर Oppo Reno 3 Pro की डिस्प्ले मैक्सपी ट्रस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है, जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि डिस्प्ले खरीदने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं है. फ्रेंड्स, maxpi.com पर ऑर्डर करना बहुत ही इजी और सिंपल है. हमारी वेबसाइट maxpi.com पर अपने प्रोडक्ट को सर्च करें और प्रोडक्ट पेज पर जाकर बाय नाउ पर क्लिक करें. अपना नाम, मोबाइल, एड्रेस फिल करें और ऑर्डर पर क्लिक करें. ऑर्डर क्लिक करने के बाद आप हमारे सुपर सिक्योर पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, जहां आप ऑलमोस्ट हर तरह से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वॉलेट एक्सेट्रा. वंस योर पेमेंट इज डन एंड योर ऑर्डर इज प्रोसेस, इट विल बी सेफली पैक्ड एंड डिस्पैच्ड विद इन 1 or 2 days. और हाँ गाइस, शिपिंग बिल्कुल फ्री है, सो यू जस्ट हैव टू पे फॉर द प्रोडक्ट एंड नथिंग एल्स. आपके ऑर्डर की सारी अपडेट्स और ट्रैकिंग डिटेल्स रेगुलरली आपको आपके ईमेल और फोन पर भेजी जाएगी, जिससे आप अपने ऑर्डर का स्टेटस जान सकते हैं. maxpi.com पिछले 6 सालों में अपने हजारों हैप्पी कस्टमर्स को फोन पार्ट डिलीवर कर चुका है और ये गिनती डेली बढ़ रही है. सो वेट मत करिए, अभी ऑर्डर करें और चल रहे स्पेशल कैशबैक एंड हैवी डिस्काउंट्स का फायदा उठा के अपने फोन में लगवाएं बेहतर क्वालिटी पार्ट्स को भी.

0: सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेही ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते द्वयनवत्युत्तर षट्शताधिक पञ्चनवतिः सहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्यास्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ़ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्ड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण सञ्चालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20/26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावलिः 20/19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतं एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतं उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ

0: टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजस्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव को 213.77 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्ज में हामी आकाशवाणी गान्तोक को बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई मोबाइल एप न्यूज अन एआईआर मा पनि सुनिरहनु भएको छ।
3: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोता, हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, समय हाम्रो स्टुडियोको घडी अनुसार बिहानको 7:05 भइसकेको छ र सधैँझै आज पनि यहाँहरूलाई मनोरञ्जन

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी।

0: इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में यह दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई

0: अभी तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में

0: पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 विल कम इन टू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट द एक्ट विच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एम्पावर रूरल इंडिया। Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides

तो दोस्तों, दूर तो हम निकल आए हैं और निकलते निकलते हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है। अब बात आती है कि पहुंच चुके हैं और या कुछ लोग अगर पहुंचने वाले हैं या कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें वहां पर जाना है, टिकट करवानी है, लेकिन कब जाएं, कौन से मौसम में जाएं, बहुत बड़ा सवाल है। क्या गर्मी में जाएं तो गर्मी लगेगी, बारिश के मौसम में जाएं तो बारिश होगी, तो कौन सा महीना आपके लिए वहां जाने के लिए सबसे बेहतरीन है? अगर आप हरियाली, बादल और झरने का असली जादू देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौसम रहने वाला है और सबसे अच्छा महीना जून से सितंबर तक का महीना सबसे बढ़िया है। हालांकि इस दौरान थोड़ी बहुत वहां बारिश रहती है, लेकिन आराम से आप घूम सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो भी मौसम बहुत ही सुहावना रहता है और आप प्लान कर सकते हैं अक्टूबर से अप्रैल के महीने में।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु अग्रवाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर। भारत भ्रमण करते हुए आज हम पहुंचे हैं मेघालय में चेरापूंजी में। तो हमने अपनी टिकट्स बुक करवा ली है क्योंकि हमें यह पता लग चुका है कि हमें वहां कब जाना चाहिए, कौन से महीने में, कौन से मौसम में हमें वहां पर जाना चाहिए। लेकिन अब वहां पहुंचने के बाद आखिर कहां कहां घूमें, जल्दी से नोट कर लीजिए और एक अच्छी सी आइटनरी बना लीजिए। तो कहां घूम सकते हैं, सबसे पहले आप वहां जाएं तो भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल को देखना ना भूलें। आपको बता दें, करीबन 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना आपको देखने के बाद किसी चित्र से कम नहीं लगेगा। इस वाटरफॉल का नाम है नोहकालिकाई जल प्रपात। आप जरूर जाएं यहां पर। और इसके बाद में आप यहां पहुंचने के बाद में प्लान कर सकते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज की एक खासियत है, ब्रिज सुनकर, पुल सुनकर आपके मन में आता होगा कि किसी सीमेंट या लोहे का बना होगा, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। आपको बता दें कि ये जो पुल है ये किसी भी सीमेंट और लोहे से नहीं बना है, बल्कि ध्यान से सुनिएगा, बल्कि रबर के पेड़ों की जड़ों से इस पुल को बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और एक और बात, इसको देखने के लिए लगभग 3000 सीढ़ियों की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आप सोचिए, ट्रैक करके अगर आप उस पुल तक पहुंचेंगे तो मंजिल की जो थकान आपको हुई है, जो सफर में थकान हुई है, वो इस मंजिल तक पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान को भुला देगी। इसके बाद आप डेंथेलेन फॉल्स भी जा सकते हैं, जो कि एक बेहद शांत और खूबसूरत झरना है। इको पार्क जा सकते हैं, सेवन सिस्टर्स फॉल्स, जी हां यहां जाना ना भूले। यहां पर बरसात के मौसम में सात धाराओं में बहता एक जलप्रपात आपको बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देगा। तो ये आपके लिए एक आइटनरी आप बना सकते हैं, और जाएं तो जरूर यहां पर आप सभी घूमकर आएं। तो टिकट बुक करा ली है जल्दी से, क्योंकि आप सभी की आपको गाड़ी बुला रही है।

जी हाँ दोस्तों, तो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी तो बुलाएगी क्योंकि इतनी सारी जो जानकारी हमने ली है, मन जो है वो आप सभी का मैं जानती हूँ, आप थोड़ा सा विचलित हो उठा है। तो चलिए, वहां पहुंच चुके हैं, वहां घूम चुके हैं, अब बात आती है कि आखिर पेट पूजा कैसी की जाए। पेट पूजा बहुत जरूरी है, यानी खाने में क्या खाया जाए। तो आपको बता दें, वहां का कुछ स्थानीय बहुत ही जो भोजन है, सादा है, पौष्टिक है, लेकिन बहुत ही स्वाद है। वहां जाएं तो जरूर आप लोग चखे जादोह, नोट कर लीजिए। जादोह होता है चावल और मसालों से बनने वाला वहां का पारंपरिक व्यंजन। साथ ही वहां पर तुंगरी बाई, यहां का एक सोयाबीन से बनने वाली स्थानीय डिश है, तो आप वहां जाएं तो ये भी वहां पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही काले तिल की ग्रेवी में बनने वाला एक व्यंजन जिसका नाम है दोहने योंग, ये भी वहां का बहुत ही प्रसिद्ध आहार है। तो ये सब आप जाएं तो जरूर वहां पर खाएं। और साथ ही वहां पे बांस की कोपलों की बनी सब्जियां बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और स्थानीय लाल चाय और ताजा अनानास। जी हां, वहां जाएं तो ताजा अनानास खाना बिल्कुल ना भूले। और जब इतनी सारी ये मीठी मीठी रसीले पदार्थों की जब बात होती है, तो फिर दिल कहता है ना कि आज फिर जीने की तमन्ना होती है बस।

0: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब सुन्न लागेका छौं हिन्दी भाषा पाठ।
1: नमस्कार बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं सुष्मिता सिंह आप सभी को अनुच्छेद लेखन के विषय में पढ़ाने जा रही हूं। आशा करती हूं यह कक्षा आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा। बच्चों, आसान से परिभाषा में अनुच्छेद लेखन को यह कहेंगे, किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूरा और सार्थक होता है। इसमें जो भी हम अपने विचार रखते हैं वह संक्षेप में रखते हैं। हमेशा हमारे मन में यह दुविधा होती है कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है, यह निबंध लेखन से किस प्रकार भिन्न होता है। कई बच्चे निबंध और अनुच्छेद को एक मान लेते हैं, जबकि अनुच्छेद और निबंध में काफी विभिन्नताएं होती है। निबंध लेखन में हम एक विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक और काफी शब्दों में उसका वर्णन करते हैं, जबकि अनुच्छेद काफी संक्षिप्त एवं सटीक होता है। अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि अनुच्छेद लिखते समय किन किन विशेष बातों का ख्याल रखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में बहुत सी बातें आवश्यक होती हैं। सबसे पहली और आवश्यक बात कि जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हम बिल्कुल सटीक और साफ साफ शब्दों में लिखें। ये नहीं बच्चों कि हमें विषय मिला है जल प्रदूषण और हमने अपनी अनुच्छेद वायु प्रदूषण पर लिख दिया। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने विषय से बिल्कुल नहीं भटकना है, नहीं तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसी को हम विषयानुकूलता भी कहते हैं, मतलब जो विषय हमें दिया गया है हमें अपने विचार उसी पर लिखना होता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व भाषा का होता है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। जब तक आपकी भाषा पाठक पर प्रभाव नहीं डालेगी तब तक वह लेख अच्छा और महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। लेखनी में शुद्ध भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए लिखते समय यह विशेष ध्यान दें कि अनुच्छेद में जो भाषा आपने प्रयोग किया है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली एवं शुद्ध होना चाहिए। ध्यान रखें आपकी भाषा में कोई त्रुटि ना हो और विषय के अनुसार हो। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस पर भी आपके अंक कट जाएंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, संक्षिप्तता। इसका मतलब है कि हमारा अनुच्छेद संक्षिप्त तथा कम शब्दों में पूर्ण हो जाना चाहिए। जिस प्रकार हमें निबंध में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, किसी एक विषय का विस्तार में वर्णन करना होता है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद संक्षेप में लिखा जाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को 80 से 100 शब्दों में समाप्त करना होता है। हमें संक्षेप में ही अपने विचारों को प्रकट करना होता है, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बातों को लिखना। अनुच्छेद में ज्यादातर शब्द सीमा 100 से 120 रखी जाती है। और हाँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर शब्द सीमा नहीं दिया गया हो और प्रश्न 5 अंकों का है तो आप 80 से 100 शब्दों में अपना अनुच्छेद खत्म कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को हमेशा सही क्रम में रखना चाहिए, मतलब हमारा अनुच्छेद हमेशा क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि आप जो वाक्य लिख रहे हैं वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से आपस में जुड़े होने चाहिए। मैं फिर से एक दूसरे तरह से इसकी परिभाषा बताती हूँ। जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद निबंध

से छोटा होता है। इसमें निबंध की तरह भूमिका, अंग तथा निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है। लेकिन हाँ हाँ बच्चों, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में विषय से संबंधित कोई सूक्ति, उदाहरण या किसी कविता के दो पंक्तियां लिख दे तो अनुच्छेद और प्रभावशाली तथा भावनात्मक हो जाता है। इससे पाठक पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। जब भी कोई पाठक आपका अनुच्छेद पढ़े, वह उस भावना से जुड़ जाए और अंत तक आपका अनुच्छेद पढ़ेगा। तो बच्चों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और यह निबंध लेखन से किस प्रकार भिन्न है। चलिए मैं अब आप लोगों को कुछ विषय पर उदाहरण सहित अनुच्छेद पढ़कर सुनाती हूँ, जिससे आपके मन में कोई भी आशंका होगी वह साफ हो जाएगी। मेरा पहला विषय है अभ्यास का महत्व। इस पे मैं आपको अनुच्छेद पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। जिस प्रकार अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, उसी प्रकार एक मंद बुद्धि वालक वरदराज ने निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की निरंतर रगड़ से कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से इस विषय में कुशलता प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको समझ में आया? इस अनुच्छेद को मैं एक बार और पढ़ रही हूँ और बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। जिस प्रकार अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, उसी प्रकार एक मंद बुद्धि वालक वरदराज ने निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की निरंतर रगड़ से कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से इस विषय में कुशलता प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों को मैंने एक उदाहरण दिया, अब मैं दूसरा विषय लेने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मीठी बोली का महत्व। वाणी ही मनुष्य को प्रिय व अप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वह सबका प्यारा बन जाता है और उसमें अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी बोली मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस तथ्य को कोयल और कौए के उदाहरण द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। दोनों दिखने में समान होते हैं, परंतु कोयल की मीठी आवाज तथा कौए की कर्कश आवाज दोनों को अलग अलग पहचान देती है। इसलिए कौआ सबको अप्रिय तथा कोयल सबको प्रिय लगती है। कौए की कर्कश आवाज और कोयल की मधुर वाणी सुन सभी जान जाते हैं दोनों के गुण। मनुष्य अपनी मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना दोस्त बना सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत आदर पाता है। विद्वानों और कवियों ने भी मधुर वचन को औषधि के समान कहा है। मधुर बोली सुनने वाले व बोलने वाले दोनों के मन को शांति मिलती है। इससे समाज में प्रेम व भाईचारे का वातावरण बनता है। अतः सभी को मीठी बोली बोलनी चाहिए तथा अहंकार व क्रोध त्याग करना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने दो उदाहरण से अनुच्छेद लेखन को समझा, अब मैं आप लोगों को एक और उदाहरण पढ़ने जा रही हूँ। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है और अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा ठीक समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है।

0: आता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीर दास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर कभी नहीं आता। अगर एक बार हमने समय को व्यर्थ गंवा दिया तो हमें पछताने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया है उसे वर्तमान में ना सोचकर आगे अपने कार्य पर निरंतर प्रयास एवं मेहनत करने की सोचनी चाहिए। इसी में हमारी भलाई तथा बुद्धिमानी है। तो बच्चों, अभी तक तीन उदाहरण के साथ आप लोगों ने अनुच्छेद लेखन के बारे में समझा कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, शब्दों में कसावट होनी चाहिए, हमारे शब्द प्रभावशाली होने चाहिए और हमारे भाषा शुद्ध होनी चाहिए। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि अनुच्छेद क्या होता है। किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूरा और सार्थक होता है। इसमें जो भी हम अपने विचार रखते हैं वह संक्षेप में रखते हैं। निबंध लेखन में हम एक विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक और काफी शब्दों में उसका वर्णन करते हैं, जबकि अनुच्छेद काफी संक्षिप्त एवं सटीक होता है। जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हम बिल्कुल सटीक और साफ साफ शब्दों में लिखें। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने विषय से बिल्कुल नहीं भटकना है। जो विषय हमें दिया गया है हमें अपने विचार उसी पर लिखना होता है। लेखनी में शुद्ध भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए लिखते समय यह विशेष ध्यान दें कि अनुच्छेद में जो भाषा आपने प्रयोग किया है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली एवं शुद्ध होना चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त तथा कम शब्दों में पूर्ण हो जाना चाहिए। हमें निबंध में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, किसी एक विषय का विस्तार में वर्णन करना होता है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद संक्षेप में लिखा जाता है। हमें संक्षेप में ही अपने विचारों को प्रकट करना होता है, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बातों को लिखना। हमें अपने विचारों को हमेशा सही क्रम में रखना चाहिए, यानी कि आप जो वाक्य लिख रहे हैं वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से आपस में जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है, इसमें निबंध की तरह भूमिका अंग तथा निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में विषय से संबंधित कोई सूक्ति उदाहरण या किसी कविता के दो पंक्तियां लिख दे तो अनुच्छेद और प्रभावशाली तथा भावनात्मक हो जाता है। तो बच्चों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और यह निबंध लेखन से किस प्रकार भिन्न है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी उदाहरण के साथ एक और शीर्षक पे अनुच्छेद लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा शीर्षक है, कंप्यूटर एक जादुई पिटारा। आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो काम मनुष्य द्वारा पहले बड़ी कठिनाई के साथ किया जाता था, आज वही काम कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी ही आसानी से चंद मिनटों में कर लिया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, याहू एवं बिंग आदि वेबसाइट पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर ईमेल, वीडियो कॉल आदि के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए बस हमें इंटरनेट तथा अकाउंट होने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। इस पर घर बैठे अनेक खेल खेले जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर मानव जीवन को बहुत सरल तथा आसान बना दिया है। अत्याधुनिक तथा मुश्किल से मुश्किल कार्य कंप्यूटर के माध्यम से मिनटों में कर लिए जाते हैं। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कंप्यूटर सच में एक जादुई पिटारा है। तो बच्चों, देखा आपने मैंने कैसे कम से कम तथा प्रभावशाली शब्दों एवं उदाहरण के साथ अपने अनुच्छेद को पूरा किया है। उसी तरह आप भी किसी भी दिए गए विषय पर ये सारी बातों का ध्यान रखकर अनुच्छेद लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कक्षा आपके लिए फायदेमंद रही होगी और अनुच्छेद लेखन के विषय में जो भी भ्रम रही होंगी वह समाप्त हो चुकी होंगी तथा साफ हो चुकी होंगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और अगले कक्षा में मिलने की उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोता सुनिरहनु भएको थियो हिन्दी भाषा पाठ। अब सुनाउन लागेका छौं अभिजित भट्टाचार्य अनि साथीहरूको स्वरमा रहेको हिन्दी फिल्म गीत।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
3: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
3: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
3: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
3: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटरॉइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
3: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते
2: हैं।
3: लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
3: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
3: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
3: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
2: जी,
3: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
3: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
3: अरावली की कहानी।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
6: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
6: वाह, क्या बात है
7: मैम।
6: हाँ बेटी,
7: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
6: बिल्कुल कहा।
7: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
6: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
7: जी, पहाड़ी।
4: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
6: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
6: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
6: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
6: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
4: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
8: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
6: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
6: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
4: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
6: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
8: जी मैम,
7: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
4: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? चूंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
6: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
7: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
6: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
5: सॉइल इरोजन,
6: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
4: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
6: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: हाँ, जी मैम।
7: यस मैम।
6: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
7: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
6: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
7: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
6: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है।

0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज़।

0: आती है। इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
1: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
0: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना। बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
0: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
0: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
0: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
0: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
1: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे भाई, ये भी
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है ना, चलो।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी, मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।

0: हाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
1: मुखिया जी
0: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
1: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
0: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
1: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
0: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
1: जैसी आपकी मर्जी।
0: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
1: आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए।
2: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग
4: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अबको केही क्षणमा हामी सुनाउनेछौं आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी विविध भारती सेवाहरू। तबसम्मलाई सुन्दै गर्नुहोला आकाशवाणी गान्तोक।

दो जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहती अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे।

अभिनेत्री साधना के तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए। इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समुन्द्र जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं।

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खुश फहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुश फहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये गलत फहमियां पैदा करती हैं और कभी कभी ये जब खुश फहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि गलत फहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थी। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो मूल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीफ देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही है जो असल जो चोर है, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हां कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है, मेरा साया फिल्म में एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलत फहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलत फहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था, मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज थी और श्रोताओ दो जो कलाकार हैं, गायक कलाकार, उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखती हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरी महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

0: मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ

0: राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है, जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्साकर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: इंडिया एंगेजमेंट्स भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं

0: इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब सुनाउन लागेका छौं सिक्किमे भोटिया लोकगीतहरू एकै कलाकार छेवाङ दोर्जीको स्वरमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देशभर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेनदेन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल गए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन JRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि JRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया है। इनमें ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े धान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India Initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact, and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. Increased wages under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective across the country from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said, for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. President Draupadi Murmu today called upon the youth to pursue excellence with dedication, integrity and strong ethical values to help realize the vision of a developed Bharat by 2047. Addressing the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapur as a chief guest, the President said the energy, talent and commitment of the young people will play a decisive role in building an inclusive and prosperous nation.
5: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
4: Newly appointed Chief of Army Staff General Dheeraj Seth has stressed the need to advance the modernization of the Army to tackle the challenges of the evolving security environment. Addressing the media today after assuming charge as the 31st Chief of Army Staff, General Seth highlighted that the Indian Army's objective is to build a technology-enabled future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains. The latest passport application height fee has been implemented under the Passports Amendment Rules 2026 from today. Under the revised fee structure, a 36-page fresh passport or reissue of a passport will now cost 2,500 rupees. The fee for a 60-page ordinary passport or its reissue has now been fixed at 3,500 rupees, while under the Tatkal scheme, it will cost 6,000 rupees. Goods and Services Tax GST has strengthened India's vision of Ek Bharat Shresth Bharat of the past 9 years. We now take you live to media briefing where Union Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav is informing about cabinet decisions.
6: Overall, Satyo, NDA 3, Mane Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ke is रेलवे के मेट्रो के और इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिए गए हैं समरी में देखें तो 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स 260,000 करोड़ के 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 370,000 करोड़ के 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 150,000 करोड़ के 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम 37,000 करोड़ फिर वाडवन पोर्ट और शिप रिपेयर फैसिलिटी शिपिंग के रिफॉर्म्स मिला के 1.5 लाख करोड़ करीब रोपवेज उसके बाद में हाइड्रो पावर फिर इंडस्ट्रियल सिटीज पीएम आवास योजना जल जीवन मिशन का मॉडिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन सब मिला के करीब करीब 26 लाख करोड़ के और ये सारी की सारी नींव बन रही है हमारे मध्यम वर्ग के लिए जिनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
4: And that is the end of this news bulletin.

नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आपके साथ है हम रूमी मलिक। और जुलाई शुरू हो चुका है, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। किसी को तनख्वाह मिलती है पहली तारीख को, तो किसी के बैंक में इंटरेस्ट आता है पहली तारीख को। पहली तारीख को हम कुछ न कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, है ना। आज से क्या सोचा है, क्या करोगे? एक्सरसाइज ज्यादा कि चाय कम? हाँ वैसे फल खाने शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस भी है। यस यस यस, मैं तो बहुत बड़ी फ्रूटेरियन हूँ, फल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन सबसे अच्छा फल क्या होता है? सबसे अच्छा फल होता है मेहनत का फल। जी हाँ, मेहनत का फल इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है। और उस डरने की भी कोई बात नहीं है, वो कोई शुगर वुगर भी नहीं कॉज करता। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम इस खूबसूरत से गीत के साथ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन, आपका ही अपना प्रोग्राम, फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम। हमारे पास हैं शोभापुर गांव, शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता कौर जी, और ये सुनना चाहती हैं गीत, सारे शहर में आपसा कोई नहीं कोई नहीं। देखो पहले गीत में हमने आपको बता दिया है ना कितने खूबसूरत मोड़ आते हैं, गाना भी रेडियो पे था, रेडियो स्टेशन पे गा रहे थे ना, कौन गा रहे थे, राजेश खन्ना है ना। और बारिश के मौसम के बारे में, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया, वैसे मानसून की प्रेडिक्शन कल से थी तो भाई आ ही गया आज कल में। तो अब हम अटेंडेंस लेते हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया, प्रकाश वर्मा, विजय सुरलकर, सोहिल शेख, मसरूर हसन, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद सैयद अबासी, अंकित कांगरा, देवशंकर तमूरिया, उत्तम सिंह जिंगेल, आगे बढ़े बोधराज खोलवाल, कमलकांत गुप्ता, गंगाधर सवनकर, फारूक अली खान, कुमकुम जी, संजय साहू पोतिया, असलम मंसूरी, सदानंद मंदूरकर, संजय ढींगिया, कमाल ही हो गया, लखपत राज, नवाब अहमद, मोहम्मद कमर। देखो आज हमने कितनी अच्छी तरह सारे नाम एक साथ ले लिया, और अच्छे बच्चों की तरह आपने भी हमको सिर्फ एक एक मेल ही भेजा। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि सारे शहर में ये गीत सुन लें, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या खाना पीना होता है, क्या एहतियात बरतनी होती है सावन के मौसम में। ओके आइए सुनते हैं गीत।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा गीत। हम तो ये कहेंगे अपने पसंदीदा गीत, अपने दोस्तों के पसंदीदा गीत। गीत तो गीत है ना, मधमाते गाते गुनगुनाते। खैर वो तो आएगा 5:10 पे, हम ही होंगे उस कार्यक्रम में। लेकिन अभी हमारे साथ है बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका, और ये सुनना चाहते हैं गीत, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। देखो हम कितना गर्मी गर्मी गर्मी कर रहे थे और कैसे बारिश का मौसम आ गया। दिव्य ऋतु कहा गया है वर्षा को वेदों में, और वर्षा का मौसम बहुत अच्छा होता है। थोड़े से दिक्कत यह आ जाती है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें कीड़े आदि लगने की संभावना होती है, तो शाक या साग नहीं खाया जाता। आप कभी भी देखिए वर्षा के मौसम में, अब तो हमारे भोले बाबा के सावन के व्रत भी अभी उसमें समय है, लेकिन वो भी आएंगे जब, है ना, श्रावण के सोमवार जो आएंगे, तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां जो है थोड़े अवॉइड की जाती है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है पेट में अगर कृमि या कीड़े हो जाए तो उसके लिए प्याज बहुत खाया जाता है, कच्चा प्याज जो लोग खाते हैं वो खा सकते। बाकी तो अभ्यंग के लिए, मालिश के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्ट हो जाती है। तो जिन भी लोगों का वात बड़ा हुआ है या तकलीफ होती है, दर्द होते हैं जोड़ों में या जैसे भी, तो उसमें तेल मालिश बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है। और खाने में क्या, जिन लोगों को खट्टा रस अगर पसंद है ना, तो वो इस मौसम में बहुत खाया जाता है। सचमुच में अचार वगैरह जो होते हैं ना, चटनियां, ये दरअसल पाचक होते हैं। एक जमाने में इनको विलन बना दिया गया था, लेकिन अब जब से हमारी सोच में भारतीयता लौट आई है तो हमें अब समझ में आता है कि वाकई में जैसे जिंदगी में थोड़ा सा चटपटापन अच्छा लगता है ना, वैसे ही खाने में भी जरूरी है। फिलहाल तो ये मीठा मीठा गाना।

गोल्ड. एफएम गोल्ड पर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी नई चीज आए, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो कोई नया एक्सपीरियंस हो, तो वो बड़ा ज्यादा जरूरी है कि आप उसे अपना लें. जब आप उसे अपनाते नहीं, आप कोई कहे मुझे तो बारिश बड़ी गंदी लगती, अरे बारिश ही अपने आप में गंदी नहीं है. हाँ ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि सड़क टूटी हुई है या कहीं पे पानी भरा हुआ है तो आपको वो दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, अनुभवजन्य वो बातें हैं, ठीक है. लेकिन बारिश अपने आप में तो भाई चाहिए ना, पौधों को चाहिए, खेत खलिहानों को चाहिए, मौसम पे बारिश आनी भी चाहिए. मौसम और मौके पे हमें ईमेल भी पढ़ना चाहिए. अरे कमलकांत गुप्ता जी ने लिखा कि रूमी जी रुलाना मत, हमारा मेल पढ़ देना. अच्छा मैंने पढ़ा, उसमें उनके पूरे फैमिली के पूरे टब्बर के नाम थे, लेकिन उसमें गीत की फरमाइश तो थी नहीं. अब क्या मैं रू, नहीं मैं नहीं रहूंगी. कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक. जी ये मेरी बंधु परिवार हैं भाई मेरे, और कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. ये सुनना चाहते हैं कौन सा गीत, सुनना चाहते हैं आसमान से आया फरिश्ता, ये गीत सुनते हैं हम, आइए.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि गाने उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, हो सके तो हमारा नाम भी ले लेंगे। हाँ हाँ ले लेंगे, जबान कोई हमारी दुखती थोड़ी है, नाम लेने पे कोई टैक्स थोड़ी है अभी तक। नमस्कार रूमी बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एफएम गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें, मानसून सबके लिए रहमतों की।

बारिश करे, यही दुआ है। ये अच्छी दुआ है ना। किसने लिखा है? सतीश अनेजा जी ने, चंडीगढ़ से। और ये सुनना चाहते हैं रिमझिम गिरे सावन। ये गीत तो बहुत अच्छा है, आइए ना, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना ये गीत सुन लिया जाए।

जारी है कार्यक्रम मन भावन। कितनी सारी ईमेल्स आ रही हैं, कमाल कमाल हो रहा है आज तो। विजय सुरलकर जी क्या लिखते हैं देखें, जानकारी और गीतों से भरपूर कार्यक्रम का आज मजा आ रहा है, लाजवाब पेशकश। रोमी दीदी बहुत ही प्यारा गीत है, जरूर बजाना प्लीज। बिल्कुल आपका नहीं तो किसी और का तो प्ले करेंगे इसी। विजय जी देखो मुझे माइकल कश्यप नाम देखो, माइकल माइकल कश्यप जी कहां से लिख रहे हैं, गांव दूधली जिला मुजफ्फरनगर लिख रहे हैं। गीत है इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, फिल्म है जुल्म की पुकार। और रोमी मलिक देखो, रोमी लिख दिया है, आर ओ एम आई कर दिया है, मैं बात नहीं करूंगी ठीक है ना, माइकल को फिर मैं कुछ और बना दूंगी नहीं तो। रोमी मलिक जी 2 साल बाद मेल भेजा है, प्लीज गीत सुनवा दो। देखो माइकल जी अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं जिसको कहते हैं कि शूटिंग इन द डार्क, है ना, अंधेरे में तीर चलाना। अब मैंने तो ये गाना सुना नहीं, और जुर्म की पुकार टाइप की फिल्म भी नहीं सुनी, पर मैंने ढूंढी और देखो मेरे कंप्यूटर जी कितने अच्छे, उन्होंने निकाल भी दिया। अब ये गीत हम सुनते हैं ठीक है, इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। आओ खाएं कस्में कि देंगे एक दूसरे का साथ, आरजे और लिसनर।

मान गए आपको माइकल कश्यप जी, बड़ा अच्छा गीत आपने हमको सुनाया सुनवाया। अच्छा जी, अब हमारे पास बड़ी सारी मेल्स आई हैं, जरा मैं देख लूं कौन कौन सी है। रिस्पेक्ट

टिज्जी रूमी मलिक जी, आपको पहली बारिश की बूंदे मुबारक हो जी। आपके जीवन में भी सदा खुशियों की बरखा होती रहे। यह गीत जो है कहते हैं आपकी पसंद का ही। सहारनपुर से लिख रहे हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, सैयद मसरूर। क्या बात है जी, अभी मैं पीछे कुछ दिन पहले गई थी कहीं पे, तो बीच में सहारनपुर का स्टेशन आया था, वो 35 मिनट रुकी थी ट्रेन हरिद्वार जाने वाली। हाँ जी, साथ में दिग्दर्शन कौर जी जो है कहती है आप मेरी गुरु बहन है और आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है तो 30 तारीख से, तो आप हमें इसके बारे में बताएंगे। भक्ति वाला महीना है। भक्ति वाला महीना तो है, बिल्कुल है। भारतीय परंपरा में बड़ी सुंदर सी बात कही गई है कि ये जो मन है ना, सबसे ज्यादा यही दुखी करता है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते मत चालिए पलक पलक मन और। तो मन को बांधने के लिए होता है मंत्र। जी हाँ, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब गहन अध्ययन किया तो उन्हें प्रकृति की तरफ से ही, कायनात की तरफ से ही ऐसी ध्वनियां, ऐसे मंत्र मिले जिनका बहुत ही हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और आकांक्षाएं मनोकामना भी पूरी होने लग गई। अब हर किसी को यही चाहिए कि हाय मेरी बात मानी जाए, मेरा काम बन जाए। यही हम चाहते हैं ना, और क्या चाहते हैं, भगवान को क्यों मनाते रहते हैं, मेरा काम बन जाए। तो जब चौमासा आता है, अब देखिए बारिशें आ गई हैं, तो पहले क्योंकि ये बड़ी अच्छा एक साइकिल था हमारा प्रकृति का, नेचर का, 4 महीने लगातार बारिशें होती थी और किसान क्या करे भाई, खाली छोड़ के अब वो तो बैठा हुआ है ना। तब क्या होता था, गांव गांव में भागवत के या रामायण जी के बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े 4 महीने किसान या जितने भी लोग हैं, है ना, परंपरागत तो सभी लोग सुनते थे कथा कहानियां। तो ये कितनी ज्यादा सुंदर बात है। आप देखो हमारे देश में पुस्तक की जरूरत नहीं है, संस्कार जो है ये हर किसी के अंदर है ना, व्यवहार में ही संस्कार है। क्योंकि आप देखो ना, जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, अब जरूरी नहीं है कि किसी को पढ़ना आता हो, लेकिन उसे पता है रामायण में क्या घटित हुआ, क्या सही है क्या नहीं है। तो अच्छे बुरे की समझ होना बहुत बड़ी बात है। दिल से शुक्रिया कौन कर रहे हैं मुझे, कमलेश, सचिन, मुकुल और दीपांशु। फिल्म बदलते रिश्ते मेरी सांसों को जो महका रही है। अच्छा चलो ये गीत सुना देती हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर कुछ और भी हमें गीत लेने होंगे। टन टन डीके परिहार जी डीके परिहार जी लिख रहे हैं, हमारा तो न मैसेज इंक्लूड होता है न फरमाइश भेजती, बताओ जरा, इतनी कंप्लेंट करोगे तो बात नहीं करेंगे हम। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमें लिखा ही नहीं है कि कौन सा गीत ये सुनना चाहते हैं, है ना, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये वाला गीत सुना सकते हैं आपको, जो डिमांड किया अभी, मेरी सांसों को जो महका रही है। आइए सुनते हैं ये गीत।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मनभावन मनभावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। और किसी भी तरह से कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सभी लिसनर्स के नाम लिए जाएंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूं। मैं तो अपने प्रोग्राम में आपकी अटेंडेंस भी लेती हूं। अब अगर आप मुझे मैसेजेस भेजेंगे और ये हक से डिमांड करेंगे तो ये हक नहीं है, हमारा प्रेम है। याद रखिएगा, मोहब्बत का रिश्ता जो है ना दोस्तों, बड़ा नाजुक होता है ना, जरा सा भी उसमें कुछ इधर उधर बदलाव हुआ तो गांठ लग जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लिसनर्स देर से जुड़े हैं और कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं हमारा मैसेज लिया जाए। क्यों मैं आपके सिर्फ नाम पढ़ने के लिए मैसेज ले लूं? आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बताएं, ऐसा क्या योगदान किया आपने, मुझे कोई एक अच्छा विचार दिया या कोई बात की मीठी, या किस तरह से, मतलब आपका नाम किस लिए, हाउ डू यू क्वालिफाई बताएं। तो हमारे साथ मोहम्मद इरशाद भी हैं, उन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल कर लो, ज्यादा इंतजार मत करवाओ वरना हम रो देंगे। इतना क्यूट मैसेज है, कस्बा बिलराम से इन्होंने लिखा है। मोहम्मद इरशाद साहब, आप देखो आपका मैसेज मैंने पढ़ भी दिया है ना। अब काफी लंबे समय से गर्मी सह रहे थे और मॉनसून आया देर से। कहते हैं जिंदगी में पहले बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और फिर राहत सुकून और आराम भी मिलता है। क्या बात है, ग्राम करेली बरेली से, अच्छा ऐसा भी है, ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी लिख रहे हैं, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया है ना। अच्छा, अब धर्मेंद्र चीपा जी जो है ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पता नहीं किन किन और भी आइडिया से कई लोग भेजते रहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत नई फिल्मों के गीत भेजे हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं बजा पाऊंगी, है ना, ओ मम्मी डैडी टाइप के गीत यहाँ पे नहीं बजते हैं, इतनी समझ अब तो होनी चाहिए। अशोक वर्मा जी, हम ये कह रहे थे कि आपका वाला गीत सुन लें जरा, एक सेकंड देखते हैं, पहले तो मैं ये गीत जरा पहले देखूं है ना। देखो ना, हाँ जी बिल्कुल है ना, क्योंकि अब मुझे लगता है आप सभी क्योंकि सावन के ही पीछे पड़ गए तो सावन वाला ही गीत सुना जाए। तो ये जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, है ना, अच्छा खंडवा से भी है लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, तो पूरे परिवार ने लिख रहे। मास्टर खिल्लू परवेश जी नमस्ते, ये लिख रहे हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तो ऐसा तो है ही सही। तो मैं कह रही थी कि आखिरी गीत रहेगा अब, है ना, तो मुस्कुराना। चार्ली चैपलिन कहा करता था कि मुझे बारिश इसलिए पसंद है क्योंकि भीगती हुई बारिश में मेरे आंसू नहीं दिखाई देते। कितनी पॉइग्नेंट बात है ना, कितनी मार्मिक बात है ना। तो ना हम खुद रोएं ना दूसरों को रुलाएं, मीठा बोलें, लंबी देर तक हमें लोग याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस कार्यक्रम का मनभावन का ये गीत आपके सामने सब

जय हिंद फौजी दोस्तों, सौर्य गाथा में आज आप सभी के साथ मैं हूं आप सबों का दोस्त दयानंद। दोस्तों आज का दिन बहुत खास है और वो इसलिए कि देश भर में वन मंथ महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। साथ ही बांसुरी के जादूगर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शीर्ष गायक कलाकार राशिद खान साहब का जन्मदिन है। सबसे पहले दिग्गज कलाकारों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी फिल्म संगीत सुनने के साथ साथ सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत का वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव के बारे में, उसके बाद क्रमशः पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के जीवन करियर के बारे में, उसके पश्चात शास्त्रीय गायक कलाकार राशिद खान के करियर के बारे में। तो फौजी दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाए इससे पहले सुनते हैं सन 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला का गीत। जावेद अख्तर की इस गीत रचना को संगीत से संवारा है संगीतकार शिव हरि ने और युगलवाद दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

वन महोत्सव जो हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, प्राकृतिक संरक्षण बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में 1 सप्ताह तक चलने वाला वृक्षारोपण उत्सव है, जो वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये उत्सव तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा साल 1950 में शुरू किया गया था। हरित महोत्सव व्यक्तियों और समुदायों को देशी पौधे लगाने और देशभर में हरित अवधारणा की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य देश के सभी राज्यों में वनरोपण और पर्यावरण को बढ़ावा देना है। इस उत्सव के दौरान स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी संस्थानों और नागरिक द्वारा वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता अभियान, प्रदर्शनियां और शैक्षणिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। आगे चर्चा होगी संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन के करियर के बारे में। इसे पहले सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना लता मंगेशकर और उनके साथियों के स्वर में फिल्म चांदनी के लिए। इस गीत के संगीतकार हैं शिवहरी।

फौजी दोस्तों, एक अनजान बच्चे से बांसुरी लेकर छुए दिल के तार। मात्र 13 साल की उम्र में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने लिखी थी अपनी खुद की किस्मत। बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक, संगीतकार और संगीत निदेशक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म आज ही के दिन यानी 1 जुलाई सन 1938 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने पहलवान थे। शुरुआत में पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने कुश्ती सीखी, लेकिन संगीत के प्रति उनका झुकाव इतना गहरा था कि उन्होंने छुपकर संगीत सीखना शुरू कर दिया। परिवार और उनकी इच्छाओं के बीच फंसे हरिप्रसाद, इसके बाद भी उनका मन संगीत में रमा हुआ था। एक दिन अचानक उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी। हालांकि उनका परिवार संगीत से बहुत दूर था, लेकिन पड़ोस से आने वाली धुन उन्हें संगीत की ओर खींचती रही, विचलित मन को शांत भी कर रही थी। कहीं न कहीं यह एक बात भी सत्य है कि बांसुरी की धुन आजकल के गानों में कम हो गई है, लेकिन आज भी पुराने गानों में बांसुरी की धुन सुन लेते हैं तो खुद को उससे जुड़ा हुआ पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत। शिवहरी के संगीत निर्देशन में फिल्म लम्हे का गीत है। आनंद बख्शी के इन शब्दों को स्वर दे रही है लता मंगेशकर, इला अरुण और उनके साथी।

0: दरअसल फौजी दोस्तों, जिस दौरान पंडित हरि प्रसाद जी ने पहली बार ये धुन बजाई उस समय माघ मेला लगा हुआ था। उसी समय उनके पड़ोसी मशहूर संगीतकार राजा राम भी मौजूद थे। जब उन्होंने हरि प्रसाद को बांसुरी बजाते हुए सुना, देखा तो वे हैरान रह गए और उन्होंने ठान लिया कि वो हरि प्रसाद को प्रशिक्षित करेंगे। यहीं से पंडित हरि प्रसाद का सांगीतिक सफर शुरू हो गया था। पंडित राजा राम ने पंडित हरि प्रसाद को प्रशिक्षित किया और आज के दौर में हरि प्रसाद चौरसिया और बांसुरी दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए। प्रशिक्षण के बाद हरि प्रसाद जी के जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव हुए। इनकी बांसुरी की आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी और लोगों का इनके धुन के तरफ झुकाव बढ़ता गया। बहरहाल चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए सुने अलका याग्निक, विनोद राठौर, सुदेश भोसले और देवकी पाकेश्वरों में फिल्म डर का गीत। शिवहरी के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।
1: अरे जो जी में आए तुम आज कर लो

0: मैं भूला रास्ता,
1: रास्ते पे आ जा।
0: मैं थाम लू भैया,
1: मैं छेड़ो सैया।
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो।
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा।
1: चल हट जा झूठा,
0: तू नाच में गाओ,
1: तू बैठ में जाओ।
0: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना।
0: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले।
0: नीला के पीला,
1: नीला ना पीला,
0: क्या लाल गुलाबी।
1: तू बोलो भा।

दोस्तों, संगीत एक ऐसा जादू है जिससे आपका मन किसी भी परिस्थिति में शांत हो जाता है। हालांकि हर एक यंत्र से जादू बिखेरना सबके लिए संभव ही नहीं होता। ठीक उसी तरह बांसुरी वादन से सबके दिलों पर राज करना भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसके बावजूद बांसुरी के जादूगर, भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक, संगीतकार और संगीत निदेशक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी का जादू देश विदेश में बिखेर दिया। उन्होंने अपने इस कला के दम पर काफी प्रसिद्धि हासिल की, जिसके कारण पंडित हरिप्रसाद को आकाशवाणी प्रयागराज में कार्यक्रम मिलने लगा। यहीं से वे अपने करियर की शुरुआत की। बांसुरी में महारत हासिल करने के बाद लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक पंडित बुलाना शुरू किया। इस कला के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। आगे चर्चा करेंगे गायक कलाकार उस्ताद राशिद खान के बारे में। इससे पहले सुनते हैं आनंद बख्शी की ही गीत रचना। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आवाजें दे रहे हैं जॉली मुखर्जी और अनुराधा पौड़वाल।

फौजी दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शीर्ष गायकों में से एक उस्ताद राशिद खान का जन्म आज ही के दिन यानी 1 जुलाई सन 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान के पिता का नाम हमीज रजा खान और माता का नाम सखड़ी बेगम था। वे उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार से ताल्लुक रखते थे। रामपुर सहवसान घराने के संस्थापक उस्ताद निनायत हुसैन खान के परपोते थे। बचपन से उनका झुकाव संगीत की ओर देखकर उनके नाना उस्ताद नासिर हुसैन खान ने उन्हें संगीत की कठोर शिक्षा दी। सन 1980 में वे अपने नाना के साथ कोलकाता आ गए और संगीत अनुसंधान अकादमी में शामिल हो गए। उनकी आवाज बेहद गहरी, भावपूर्ण और मधुर थी। दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी ने उन्हें भारतीय गायन संगीत के भविष्य का आश्वासन कहा था। राशिद खान शास्त्रीय बंदिशों के अलावा सूफी, तराना और ठुमरी के अद्भुत प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ ही आज का शौर्य गाथा यही समाप्त होता है। हमारी आप सबों से फिर मुलाकात होगी एक नए व रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

खागन सामिगेन सामलुन तंगदंग आइन बा नोसिचान याक्थोंग थिम्बे इन भागा मए नाम सिंह लपत आलो क अनिगे इंगसे बोंगबा मुक्लेपसी गियोन दोंगबांगा सिमुक तेंग सुमबोंग पेमुक पेकमा चोगबाले चोगले खागन सामिगेन सामलुन तंगदंग आइन आंगा आं खागन थिम्बे लाम नासिंग नाकमा यम ते चुरेंगवा बाले चोगले तांदि खराकले लागी आंगा नासिंग नाकर अल्ल छमांग पंगेन मिन्तुक थिम्बे हेक्सिंग कन कांदक इंगसेबुंग हिमलो।

कि होदिलो मेप मंजव भ्याते थरुंग याफर तांगु पदि खेची किखम रिको यानी थीते दी नंशा मिसे कीमो मिसे थमजे खापो की लक पर की लपटू जंबो चुलो थाकर होते सबजब जोशे यानी थाकर लखेंदी खातेम साते खेची ये पो दी को ले खोलो रिक्सर चेन जोशे रिको चेन ता दी को ले ग्यू फिंदी की खोलो हाको वो जोशे ही दिले खोलो राजी नेता की सुंक्यो प्याशे थेनलो सेमशु फीशे या इन लिंगे चु दिची देचिका था छमची देचिका लिंगे दिचुकिया केसी लिंगे चुकी शिंग दिचु तोंपु ये पाचेनी हेमा ये पे की शिंग दिचु जमदी की मेपो थेंथेमो ये पाचेनी देचिका शिंचु दिचु चुको नानी दी नमदी दी देचिका लेप्ते चिकटाई देचिका खाजे शिंचु चुको अदेची मांगचे रा सो पे के अधिक डुबते दिशो थेंशिंग ये पबे दी प्यासा दे चिका छमची दे चिका दे गचा थमचे की के माचु रुंग्या मिरी लो रीरी इरुंग न्योंशो न ची वे तिजा अधिले लाको गचा चुचुरी खेरी लाला चुके गपचुरी अधे खाजे छुछु दी दे चिका चुका चेनी दे सिंचु दिशो सोशें दिले सिंचु दिशो गचा की चुके की कप नंशा गची सेमखा जाको पिताम दिखानी शुवा चेनी गची की यानी गचा रारा ससो देसो ई नंशा खतेम टा की शिंगी चापो दी लेम थेंदो बमदो सोतो अदि हाको गुपो खेजे इचु जेंका शिंगदो शिंग अदि शिंगचु अदि लेम दुके लाप्ति की गचा की शिंगचु अदि लो बाउन दी गची ई खा चुका जेनी नमशी मंडा से दी फ्याति की यामेनी अदि की लाला साठे ऐसा ई ठे ऐसा सोखी सिंचु दिलो दिन आजा की क्या ऐसा यानी अच्छी खेम ऐसा बाग्युती चुका जेनी सिंतो अदी नेता अदम नंशा सो मिसु खेम्बे दीप्याजा आजा की दी नंशा सिंचु चुके हले दे रारा ससी की ई नंशा दी खतेम टा की सिंचु दिसु चुका जेनी सो तो था लेम थेंदो अदी नंग तर की सिंचु बाउंदी की चुको पदे खेचिटाई दी थीते दी थारिंग ले सो दी की तदौ दिगिरा छे दिन साते चिसुंग प्याशे वे दी कब ना लिंगे चुकिया खाजे छुचु रंगी छन्ना इम्बाचेरुंग रंगी फामे की छन्ना इम्बाचेरुंग रंगी पोचो फुजी की छन्ना इम्बाचेरुंग या सिंचु मंडो दिसो रंगी ईखा लेम थेंके सो हे सिंचु दिसु चुको ना नासी नि नानाले शुवा फिदुई लेरिम सम्बना दे लिंगे चुइन से लो थांगा सुंगलु नि पो फिदुई सम्बना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कम्प्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबीजी

0: श्रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडमवेभ 213.67 मीटरको 1404 किलोहर्जमा यो आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्र हो। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बेलुकीको 6:05 भइसकेको छ र हामी लिएर उपस्थित भएका छौं कार्यक्रम कानूनी सल्लाह अन्तर्गत लाइभ फोन इन कार्यक्रम। हाम्रो आजको यस फोन इन कार्यक्रमको विषय रहेको छ पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी कानूनहरू। यस विषयमा जानकारी दिन भने हाम्रो स्टुडियोमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारी कानून महाविद्यालय बुर्तुकका प्राचार्य महोदय डाक्टर दिलीप पाण्डे। यदि हजुरहरूमा पनि यस विषयमा केही प्रश्न वा जिज्ञासाहरू भए हाम्रो स्टुडियोमा सोझै कल गरी आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 03592201171 03592201171। हजुर श्रोता, सर्वप्रथम हजुरहरू सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरू साथै हाम्रो आजको विषय विशेषज्ञ डाक्टर दिलीप पाण्डेज्यूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छौ। हजुरलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन सर।
2: धन्यवाद बहिनीलाई पनि।
1: हजुर श्रोता, हाम्रो आजको विषय पर्यावरण एवं वन्य कानूनहरू विषयमा चर्चा गर्न अघि सर्वप्रथम त सर हजुरबाट जान्न चाहन्छौ कि पर्यावरण एवं वन्य कानूनहरू भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौ र यस कानूनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो?
2: सबै श्रोतावर्गलाई स्वागत जनाउँदै तपाईँको प्रश्नको जवाबमा म यो भन्न चाहन्छु, जस्तो पर्यावरण एवं वन्य संरक्षण अधिनियम भन्दा चाहिँ के बुझिन्छ भन्ने कुरा छ है। पर्यावरण भन्ने चाहिँ तपाईँको नि पर्यावरण भन्ने बित्तिकै एउटा ठूलो वस्तु हो, विषय हो, जो चाहिँ हाम्रो वरिपरि जो घटनाहरू हुन्छ है, अरू के अरू चिजहरूको एक्जिस्टेन्स छ है, हामी इङ्ग्लिसमा एक्जिस्टेन्स भन्छौँ, जस्तै ह्युमन बिइङ भयो है, तपाईँको मान्छेहरू पनि ह्युमन बिइङ पनि हो, मानवहरू पनि हो, पर्यावरणभित्र आउँछ, फरेस्ट हो, ल्यान्ड हो, वाटर पानी हो है, जल सबै हो। त्यसले गर्दाखेरि इभन तपाईँको नि यो स्पेस पनि पर्यावरणकै एउटा तपाईँको विरत डेफिनेसनभित्र पर्छ है। त्यसले गर्दा अब वन त झन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो पर्यावरणको एउटा मुख्य एउटा युनिट हो, किन वन चाहिँ हामीले भनेको छ यो चाहिँ एउटा ग्रीन लङ्स हो है, अर्थको एउटा लङ्स हो, एउटा फोक्सो जस्तै हो, जो बिना चाहिँ यो संसारले सास फेर्नु पनि सक्दैन भनेको छ। त्यसले गर्दा पर्यावरणको सुरक्षा र वनको संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, किनभने वन चाहिँ यो पर्यावरणको वृहत डेफिनेसनभित्रमा एउटा मुख्य एउटा युनिट हो। त्यसले गर्दाखेरि वनको पनि संरक्षण गर्नै पर्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ अलरेडी तपाईँको नि इन्भाइरोमेन्टको लागि पर्यावरणको लागि

0: विगतमा भारतको अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अत्यन्तै जटिल, झन्झटिलो र विभाजित थियो। केन्द्र सरकारले अन्त शुल्क, एक्साइज ड्यूटी र सेवाकर सर्भिस ट्याक्स उठाउँथ्यो भने राज्य सरकारहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट, प्रवेश कर, इन्ट्री ट्याक्स र विलासिता कर जस्ता विभिन्न करहरू असूल गर्थे। एउटै वस्तुमाथि धेरै तहमा कर लाग्ने वा करमाथि कर हुनाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो थियो र उपभोक्ताका लागि वस्तुहरू महँगा हुन जान्थे। यो जटिलतालाई हटाउन सन् 2000 प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारमा केलकर टास्क फोर्स मार्फत देशभरि एउटै कर प्रणाली लागू गर्ने अवधारणा अघि सारियो। लामो राजनीतिक बहस, संवैधानिक अडचन र केन्द्र राज्यहरू बीचको सघन छलफलपछि सन् 2016 101 संविधान संशोधन ऐन पारित गरियो। अन्तत 1 जुलाई 2017 मध्यरातदेखि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदको विशेष सत्रबाट औपचारिक रूपमा जीएसटीको ऐतिहासिक शुभारम्भ गर्नुभयो। अत भारतमा प्रत्येक वर्ष 1 जुलाईको दिन वस्तु तथा सेवाकर दिवस अर्थात जीएसटी दिवस पालन गरिन्छ। जीएसटी केवल राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ़ बनाउने रणनीतिक कदम थियो। जीएसटी लागू गरिएको सन्दर्भमा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भन्नुहुन्छ,
1: साथियों जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी, हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे।
0: एक देश एक कर एक बजार अवधारणा अन्तर्गत सम्पूर्ण भारतलाई एउटै साझा बजारमा परिणत गरी अन्तर राज्य व्यापारका अवरोधहरू हटाउनु यसको मूल उद्देश्य हो। करमाथि करको अन्त्य गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो। इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था लागू गरी उत्पादक वा व्यवसायीले अघिल्लो तहमा तिरेको कर कट्टा

0: लाइव फोन इन कार्यक्रमको विषय रहनेछ उपभोक्ताहरूका सन्तुष्टि नै ग्वालाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो भनिन्छ विश्वास जिते दूधले समृद्धि जोडिन्छ ग्वालाको घरले त श्रोताहरू यसबारे अधिक जानकारी दिन भनी हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ सिक्किम मिल्क युनियनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर डाक्टर तिलक घतानी र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासाहरू भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 03592201171 अर्थात 03592201171 कल गर्न सक्नुहुनेछ श्रोता याद राख्नुहोला दिन अनि समय आगामी 3 जुलाई 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 अनि फोन नम्बर पुनः एकपटक नोट गर्नुहोला 03592201171 03592201171 सूचना पूरा भयो हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं श्रोता अब प्रस्तुत छ श्रोताहरूकै फोन कलमा आधारित कार्यक्रम हेलो श्रोता
1: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं यसका साथै श्रोताले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ त श्रोता समय बेलुकीको 7:05 भइसकेको छ भने हामी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं यहाँकै फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता त आउनुहोस् कुरा गरौं आजको पहिलो कलरसित हेलो आकाशवाणी गान्तोक
2: जय श्री महाकाल दिदी
1: बापरे जय श्री महाकाल लगता है कि भगवान ही प्रकट हो गए पहला कॉल में ही लगता है कि भगवान ही प्रकट हो गए मेरे सामने
2: तो देखिए ना दीदी कार्यक्रम का आगाज तो भगवान से ही होना चाहिए
1: ये तो सही कहा आप
2: मैं शिवा लोहर एंटी विदिशा से बात कर रहा हूँ
1: देखिए नाम भी तो भगवान का ही है शिव जी शिव जी कभी कभी आते हैं हमारे कार्यक्रम में
2: मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान के आते हैं किस कॉल आप उठाती हो भगवान ने
1: जी जी जी वही तो आज तो आप हमारे कार्यक्रम का पहला कॉलर है
2: जी जी मुझे बहुत खुशी हो रही है दीदी से आज मैं पहला कॉलर बन गया
1: तो भगवान के नाम से कार्यक्रम भी शुरू हो गया आज
2: जी दीदी पहली बार कॉलर मैं पहले कार्यक्रम पहला कॉलर बन गया
1: जी वैसे आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं मतलब है तो भगवान तो सब एक ही मगर होता है ना
2: जी दीदी देखिए मैं ज्यादातर संकट मोचन भगवान हनुमान जी से मानता
1: हूँ ओ हनुमान जी के नाम है शिव जी मानते हैं हनुमान जी को
2: नहीं मैम वो क्या है कि संकट मोचन उनका नाम है और उनके मंदिर जाने से
1: जी जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा शिव जी आज हमारे कार्यक्रम में पहले कॉलर बनकर आए तो बताइए इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए
2: दीदी एक ही रहेगी मासूम
1: मासूम
2: उसमें एक गाना है अभिजीत भट्टाचार्य साधना सरगम जी की आवाज में एक गाना रहेगा ये जो तेरे पायलों की कंचन है
1: अरे बाप रे हम लोग ना बचपन में ये गाना में बहुत डांस करते थे ना तो बचपन का भी याद दिला दिया
2: रामायण में फिल्म राजस्थान से पूरन वर्मा जी पुरुषोत्तम कुमार जी अविनाश जी राकेश जी भगवान सिंह परमार जी रमेश प्रजापति जी गजराज जी कल्याण सेन जी और तमाम सुनने वाले और स्पेशली मेरी दीदी पूनम दीदी
1: अरे धन्यवाद धन्यवाद शिव जी ऐसे प्रकट होते रहेगा
2: जी बिल्कुल

0: हेलो आकाश वनिगंतो।
1: हेलो मैम, तो
0: जी नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: राधे राधे। मैं
0: राधे राधे
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। दीदी
0: केसरी सिंह राजपूत जी,
1: मध्य प्रदेश से।
0: जी पिछले बार आपकी बेटी ने भी फोन किया था ना?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी जी जी। नाम तो मैं भूल गई, क्या बताई थी नाम?
1: परिधि राजपूत।
0: परिधि, परिधि, परिधि बहन ने भी फोन किया था पिछले हफ्ता, तो अच्छा लगा
1: जी। धन्यवाद दीदी। क्या बच्चों को बात करने का थोड़ा तरीका हो जाता है अगर अपन कहीं कहीं किसी केंद्र पे उनको बात कराते रहते हैं?
0: प्रैक्टिस तो कराते रहते अभी से।
1: हाँ हाँ, प्रैक्टिस उनकी झिझक खत्म हो जाती है दीदी।
0: जी जी, ये तो है, बच्चों को ऐसे ही मतलब ऐसे कार्यक्रम में बात करते रहते सबसे बोलने का एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जी।
0: केसरी सिंह राजपूत जी ने तो फोन करते ही राधे राधे बोल दे ऐसे। केसरी सिंह जी, आप किस भगवान को मानते हैं? भगवान तो एक ही है, फिर भी
1: वैसे दीदी हम सबसे ज्यादा श्री रामचंद्र जी को मानते हैं।
0: ओ श्री रामचंद्र जी, इसलिए हमेशा राधे राधे बोलते हैं। पिछली बार बेटी भी, आपकी बेटी भी राधे राधे बोल रही थी।
1: हाँ वो भी राधे राधे ही बोलती थी दीदी। और वो उसने मुंबई तक बात करी है बढ़िया मैडम जी से।
0: जी जी।
1: और भी अन्य केंद्रों पर कर लेती है जब टाइम मिलता है, तो पढ़ाई भी करती रहती है।
0: जी जी जी जी, अच्छा लगा।
1: मेरी भी यही ख्वाहिश है, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अयोध्या मंदिर जाऊं।
0: जी जी।
1: तो अयोध्या मंदिर हम घूमे आए थे, एक ख्वाहिश उसकी पुलिस की है दीदी। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि भले पैसे या जो भी अपन जैसे तैसे करके
0: जी जी
1: उसकी पढ़ाई कराएं और उसको पूरी फैसिलिटी दें, लेकिन अब उसके भाग हैं दीदी।
0: जी जी जी, ये तो है। अच्छा लगा केसरी सिंह जी राजपूत जी के अच्छी अच्छी बातें, और अपने बेटी को सपोर्ट भी करते है और भगवान राम जी को भी मानते है, ये सब बात पता चल गया। तो बताइए इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए आज?
1: हाय दीदी, आप सुनवा दीजिएगा। मूवी का नाम है राजपूत और गाने के बोले, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला।
0: आप भी केसरी सिंह राजपूत, गाना फिल्म भी राजपूत से।
1: जी जी, जी।
0: अच्छा लगा, ऐसे फोन करते रहेगा हमारे कार्यक्रम में।
1: ओके दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।

0: हेलो आकाश मणिकांत।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: प्रेमजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी।
1: प्रेमजीत चक्रवर्ती।
0: ओ प्रेमजीत चक्रवर्ती, देखिए तो बाप रे, आप दोनों का नाम एक ही है ना?
1: मैं तो बंगाली हूँ और प्रेम सिंह तो हिंदी वाला है ना?
0: जी जी, मतलब नाम तो प्रेमी है।
1: नाम प्रेमी है,
0: मतलब दो प्रेम मिलकर और भी ज्यादा प्रेम बढ़ गए।
1: आकाशवाणी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का नाम है आसाम।
0: आसाम से बात कर रहे हैं? नहीं, पहले भी बात तो बातचीत तो हो चुका है।
1: आपके साथ बात कर रहा हूँ पहला।
0: ओ पहले बात कर रहे हैं? नहीं, कोई आपका नाम लेता है कार्यक्रम में? शायद सुतपा जी हो, सुतपा जी अनुप जी होंगे। हाँ, वो लोग आपका नाम लेता है, प्रेमजीत चक्रवर्ती हमेशा बोलते। तो अब तो आपसे बात करने का आज अवसर भी मिल गया। जी
1: कार्यक्रम में गाना सुन।
0: जी जी जरूर।
1: फिल्म का नाम है दिल वाले, गीता का जी। इस गाने में सुभाष चंद्र जी, अलका अर्जुन जी और अजय देव, बहुत अच्छा गाना है।
0: मतलब
1: बहुत अच्छा लग रहा है बार बार के।
0: तो सुनाती है प्रेमजीत चक्रवर्ती जी के फरमाइश में फिल्म दिल।

0: वाले से जीता था, जिसके लिए ये तो हर एक बुधवार को हमारे कार्यक्रम में इसे कॉल करते रहेगा।
1: पहले तो मैडम आप सुनिए, और मेरा अनुप कुमार भट्टाचार्य जी बहुत अच्छा दोस्त है, और भट्टाचार्य जी, आशीष जगन्नाथ जी, भगवान सिंह शर्मा जी, और असम से साइकिल मुंडा जी, और मैडम
0: धन्यवाद।

0: हेलो आकाश वनिगंतो।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: मैं सोनितपुर असम से अमल बसुमतारी हूँ दीदी।
0: अमल बसुमतारी
1: जी,
0: आज तो क्या हो रहा है कि बैक टू बैक असम से कॉल कर रहे हैं। अभी प्रेमजीत चक्रवर्ती जी ने फोन किया था, अभी अमर बसुमतारी जी कॉल कर रहे हैं। आज
1: जी, जी, जी।
0: असम से लाइन अच्छा मिल रहा है क्या?
1: जरूर। तो आज मैं गाने के लिए कॉल किया था
0: जी।
1: और हमारे बिमल बसुमतारी वो भी कॉल करता है, वो धेमाजी असम का ही है। और
0: तो हमारा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई ना, बिमल बसुमतारी जी।
1: हाँ हाँ, बिमल बसुमतारी का घर थोड़ा अलग है और मेरा सोनीपुर में, उसका धेमाजी में है। बहुत दूर
0: मतलब,
1: है, मतलब
0: दोनों भाई भाई जैसे लगते होंगे ना, बसुमतारी है।
1: हाँ हाँ हाँ, हम का जो भाषा बोलता है ये बोडो लैंग्वेज का भाषा बोलता है, हमारा मातृभाषा है बोडो। हाँ।
0: मतलब उधर ना कौन सा धर्म मानता है, कौन सा धर्म ज्यादा?
1: हम लोग का जो हिंदू ही मनाया जाता है ज्यादा से, हिंदू। हमारा बोडो का जो बाठो कहता है, बाठो इसे सेवा किया जाता है।
0: मतलब कौन सा पर्व मनाते हैं? दशहरा, दिवाली?
1: नहीं नहीं, हमारा वो फेस्टिवल आता है बिहू में, आता है।
0: असम में बिहू मनाते
1: हैं। हाँ, बिहू में भी इसे पूजा मनाता है। और हमारा पांच फेस्टिवल आता है।
0: पांच फेस्टिवल आता है वर्ष एक साल में?
1: हाँ, एक साल में। तो वो चला गया, दो फेस्टिवल चला गया और अभी भी तीन फेस्टिवल है।
0: ठीक है ठीक है। तो ऐसे तो आपसे ऐसे फेस्टिवल के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। तो आज हमारे कार्यक्रम में फोन किया तो बहुत अच्छा लगा। बताइए गाना कौन सा सुनाए?
1: हो गए प्यार की जीत मूवी गाना।
0: अच्छा लगा अमर बसुमतारी जी, ऐसे धन्यवाद, ऐसे फोन करते रहेगा हमारे कार्यक्रम में।

0: की बहुत फेमस है।
1: ओह, मैं तो मुंबई की गई थी एक बार
0: जी, और लखनऊ की जामा मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है,
1: ऐसा
0: आगरा
1: होता है
0: की
1: मतलब
0: जामा मस्जिद भी खूबसूरत है।
1: हर एक जगह पर होता है ना?
0: जी जी जी हर गांव में एक बना देते हैं एक बड़ी मस्जिद के नाम से, वो जामा मस्जिद कहलाती है।
1: ओह ऐसा है, तो आज पता चल गया। देखिए ये रेडियो का खासियत ही यही है कि
0: जी
1: हम लोगों
0: जी
1: की इतने बात पता नहीं होता है ना, तो आप लोग की
0: जी जी
1: देखिए आज कितना अच्छा जानकारी मिल गया।
0: जी
1: ऐसे तो आप लोग तो नमाज पढ़ने जाते सुबह शाम जाते हैं ना?
0: जी जी
1: अच्छा लगा कितने दिनों बाद कॉल किया और इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन भी दिया हम लोग को।
0: जी सॉन्ग है राजा हिंदुस्तानी का,
1: राजा हिंदुस्तानी से।
0: जी परदेसी परदेसी जाना नहीं,
1: बहुत अच्छा लगा इतना प्यारा सा गीत आपने।
0: और एक जानकारी और दे दूं मैडम जी, ये सॉन्ग उदित नारायण जी ने भी गाया है और अलग अलग कुमार शानू जी ने भी गाया है, अभिजीत जी ने भी गाया है और अलका याग्निक जी ने भी गाया है।
1: ओह ये भी जानकारी आज तो बहुत मुफ्त का जानकारी मिल रहा है मगर अच्छा लगा मोहम्मद जी ने आकर इतने अच्छे से जानकारी दी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मतलब किन्हीं लोग को तो पता है मगर किसी लोग को तो मेरे जैसा पता नहीं है,
0: इसीलिए मैंने जानकारी दी
1: है। जी जी अच्छा लगा। तो मोहम्मद जी ऐसे फोन करते रहेगा हमारे कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद मैडम।

0: यो आकाशवाणी हो। राष्ट्रिय समाचार रक्षा राईबाट सुन्नुहोस्। सुरुमा मुख्य समाचार। डिजिटल इण्डिया पहलले आज गर्यो 11 वर्ष पूरा। आजदेखि देशभर विकसित भारत जी रामजी ऐन लागू। सर्वोच्च अदालतद्वारा मोटर दुर्घटनामा वार्षिक आय आयकर रिटर्नको आधारमा दिशानिर्देश जारी। अनि पुरूष क्रिकेटमा भारतको T20 अन्तर्राष्ट्रियमा इंग्ल्याण्डसँग खेल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिजिटल इण्डियाको 11 वर्षको कार्यकालले गरीब र विपन्न वर्गलाई सशक्त बनाएको र लाखौंको जीवन सहज बनाएको बताउनुभयो। यस पहलले प्रशासनलाई पुनः परिभाषित गरेको, नागरिकहरूलाई सशक्त बनाएको र सम्पूर्ण विकासलाई तीव्र बनाएको छ। डिजिटल इण्डियाले जीवनको हरेक पक्षलाई छोएको छ। सरकारको महत्वाकांक्षी डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम आजको दिन 2015 शुरू गरिएको थियो। त्यस बेलादेखि यसले नागरिकहरूले देशभर सार्वजनिक सेवाहरूमा कसरी जोड्ने, सिक्ने, कारोबार गर्ने र पहुँच गर्ने भन्ने कुरालाई आकार दिएको छ। हाम्रो संवाददाताबाट थप रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जनसांख्यिकीय परिवर्तन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिलाई आफ्ना सिफारिशहरू छिटोभन्दा छिटो प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। समितिले गृहमन्त्रीलाई जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरूको बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्न र विभिन्न प्रशासनहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न, विभिन्न राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको भ्रमण गर्ने जानकारी गराएको छ। उनीहरूले जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा प्रतिक्रिया संकलन गर्न केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालयहरूसँग पनि परामर्श गर्नेछन्। विकसित भारत जी रामजी ऐन 2025 अन्तर्गत बढ़ेको ज्याला आजदेखि देशभर लागू भएको छ। ग्रामीण विकास मन्त्रालयले जारी गरेको अधिसूचना अनुसार सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा ज्याला दर बढ़ाइएको छ। मन्त्रालयले कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि अधिसूचित ज्याला यो स्तरभन्दा तल नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक प्रतिदिन 300 रूपियाँको अन्तरिम आधार ज्याला दर लागू गरिएको बताएको छ। हाम्रो संवाददाताबाट थप रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित देशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉ मनिक साहले आज नया दिल्ली में केन्द्रीय सड़क यातायात तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संग शिष्टाचार भेटघाट र छलफल पछि केन्द्र सरकार ने राज्य में यातायात पूर्वाधार को विकास महत्वपूर्ण महत्व दी रहेको बताउनुभयो। मुख्यमंत्री ने बैठक त्रिपुरा में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को प्रगति, विभिन्न सड़क परियोजना को कार्यान्वयन तीव्रता दिने र नया राष्ट्रीय राजमार्ग तथा यातायात पूर्वाधार को प्रस्ताव में केन्द्रीय

0: आधारमा दिशानिर्देश जारी अनि पुरूष क्रिकेटमा भारतको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा इंग्ल्याण्डसँग खेल आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो।
1: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 MHz अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम हेलो श्रोताको रहल भाग।
2: हेलो आकाशवाणी गान्तोक।
3: हेलो
2: हेलो नमस्कार सुत्तपाजी।
3: नमस्कार नमस्कार
2: सुत्तपाजी, आपका आज आप लोग का दोस्त है ना प्रेमजीत चक्रवर्ती जी ने फोन किया था।
3: जी, जी, जी,
2: आप लोग का दोस्त है ना?
3: जी।
2: आप लोग का मतलब जान पहचान है क्या?
3: जी।
2: ओ आप ही लोग ने नंबर दिया होगा फिर।
3: जी।
2: सुत्तपाजी का एक काम कर रहे थे, बिजी थे क्या?
3: बिजी नहीं है, बैठे है।
2: ओ बैठे है आज किचन में बिजी नहीं है क्या?
3: नहीं नहीं
2: नहीं, नहीं तो ऐसा है ना, आज बुधवार है मच्छी बनेगा। आज मच्छी बनेगा ना बुधवार, इसीलिए थोड़ा इधर उधर काम कर रहे थे। बारिश कितना हो रहा है उधर?
3: बारिश नहीं हुआ।
2: अच्छा लगा सुत्तपा जी, हरेक सप्ताह समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम में कॉल करते है, तो बताइए गाना कौन सा सुनाए इसी खुशी में?
3: गाना सुना दीजिए, कॉलेज की एक लड़की है।
2: कॉलेज की एक लड़की है? अरे बाप रे। कॉलेज की एक लड़की।
3: जी जी जी, ये गाना हो गया। दोस्तों का नाम लूंगा।
2: जी जी जी।
3: रमादित चक्रवर्ती, नितिन चक्रवर्ती, आयु दी प्रधान, उपमा भट्टाचार्य, अभिनाश तेलजी, लुकंद वर्मा, श्रीकांत जोशी, प्रशस्तम कुमार, विजय सिंह लकड़ा,
2: सबके लिए धन्यवाद। सुतबाजी ऐसे फोन करते रहेगा समय निकाल कर।

0: हेलो आकाश
1: हेलो
0: मिनीगल तो
2: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं कालाहांडी जिला भवानी पटना गांव का नाम जगतनाथपुर नाम चित्र सिंह सबर।
0: बाप रे, चित्र सिंह जी। चित्र सिंह जी तो कभी कभी आते हैं कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, और आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं?
2: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ।
0: बढ़िया हूँ, काम भी बढ़िया चल रहा है।
2: हाँ जी,
0: समोसा
2: चल रहा हूँ। हाँ जी,
0: समोसा चल रहा है।
2: हाँ जी,
0: बापरे, गरम गरम
2: सुबह बारिश हो रहा है तो लेट हो गया।
0: ओ, सुबह बारिश हुआ था इसलिए लेट हो गया।
2: हाँ जी, सुबह 7 बजे।
0: वही तो अभी आप बोले ना समोसा तल रहा हूँ तो मुंह में पानी आ गया। गरम गरम समोसा, बाप रे। अच्छा लगा बारिश की वजह से थोड़ा देर उठ गए आप ना।
2: हाँ जी,
0: तो बताइए गाना कौन सा सुना?
2: मेरा काम मोहन का गाना सुना दिए। गाना अनुराधा पौड़ाल और मोहम्मद अजीत।
0: कौन सा गीत?
2: गीत तो याद नहीं आ रहा है।
0: गीत याद
2: सारी नहीं आ दुनिया रहा है। सारी दुनिया।
0: गीत याद नहीं आ रहा है, वो वाला गीत किसे सुना? जी जी जी, कौन सा गाना बताए?
2: सारी दुनिया प्यारी, वो गाना।
0: जी जी जी जी जी, चित्र सिंह जी बिजी है फिर भी हमारे कार्यक्रम में कॉल किया, तो ऐसे फोन करते रहेगा।
2: धन्यवाद, रहते हैं, नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी कांतो।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: पंजाब से बोलते ही डर जाती मैं।
1: बठिंडा के पास पड़ता है जी हमारा मानसा शहर।
0: जी वही तो, पंजाब से बोलते ही डर जाती हूँ मैं।
1: क्यों जी?
0: पंजाब में बाप रे इतने बलवान लोग होते ना।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
0: मतलब
1: बलवान
0: आप
1: होते
0: तो
1: किसी को
0: आप लोग तो खुद उपजा कर खाते हैं ना वहाँ का ऑर्गेनिक ही?
1: हाँ ये तो है, ऑर्गेनिक खाते हैं और खुद उगाते हैं। खाने में अच्छी सेहत में काफी विश्वास रखते हैं
0: हम। ये तो है, इसीलिए तो डर जाती मैं।
1: नहीं पर डरने वाली बात कोई नहीं, हम डराने वाले नहीं है किसी को।
0: नहीं, फिर भी
1: ठीक है, अच्छी सेहत होना अच्छी बात है।
0: अच्छा लगता है पंजाब से फोन आने से। थोड़ा ये तो मजाक कर रहे हैं, मेरे पंजाब से फोन आने से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पीन सब जानने का मौका मिलता है ना।
1: बिल्कुल बहन जी, बहुत बड़े बढ़िया लोग हैं जहाँ के, ऐसी बात नहीं है। अच्छी सेहत है ये तो एक अलग बात है, पर मिलनसार भी लोग हैं बहुत।
0: ये मिलनसार भी है। हाँ, बहुत अपने संस्कृति परंपरा को बहुत मानते हैं, बहुत।
1: हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। जहाँ गुरु ग्रंथ साहब को गुरुद्वारों में बहुत जाती हैं, तो जहाँ मान्यताएं पूरी होती हैं, तो अटूट विश्वास है भगवान में।
0: अटूट विश्वास है। गुरुद्वारा तो रोज जाते हैं ना?
1: हाँ, गुरुद्वारा तो सुबह सबने जाना ही जाना है।
0: वो जाना ही जाना है ना।
1: हाँ, और जो मेले लगते हैं तो वो मेले अलग से लगते हैं।
0: मुझे तो सबसे अच्छा क्या लगता है बोलिए तो, वहाँ पटियाला।
1: पटियाला बहुत अच्छा लगता है आपको? और जो सर्दी में जहाँ मक्का का साग और सरसों का साग, मक्का की रोटी, ये अलग बात है।
0: ये अलग बात है, ये खाने का। हमेशा मैं तो देखती हूँ कि वहाँ का जितने भी महिलाएं लोग होते हैं, जितने भी लड़की लोग होते हैं, बाप रे इतना अच्छा पटियाला सूट पहनते हैं ना, बाप रे।
1: पटियाला तो हमारे पंजाब का सबसे सुंदर और सबसे हरियाली से भरा हुआ शहर है जी।
0: शहर है ना। अच्छा लगा कि आपने थोड़ा सा पंजाब के बारे में जानकारी दिया, तो इसे मुझे अच्छा लगता है। पंजाब से कोई फोन करने से मैं वहाँ के बारे में तुरंत से पूछ लेती हूँ क्या है।
1: बिल्कुल बहन जी, देखो अपने ही प्रांत हैं सभी, तो हमें तो खुशी होती है अभी किसी भी प्रांत में हम हो
0: जी,
1: अपने
0: जी।
1: देश के ही तो हैं सब।
0: ये तो है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए गाना कौन सा सुनाएं आज कार्यक्रम में?
1: गाना बहन जी फिल्म है पॉकेट मार, जो बाद में बनी थी 74 में, और उस गीत के दो बोल मैं गुनगुना के बताऊंगा।
0: जरूर जरूर।
1: बंदा परवे मैं कहां, दे आपकी महफिल कहां।
0: अच्छा लगा जगदीश रायकर जी से बात कर, तो इसी कार्यक्रम में फोन करते रहेगा। धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी, बहुत

0: त आउनुहोस् फेरि पनि कुरा गरौँ अर्को कलरसित। हेलो,
1: हाजी नमस्कार मैडम।
0: हेलो नमस्कार, आकाशवाणी गान्तोक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र जी?
1: जी मैडम जी,
0: लोकेंद्र जी आता बात है, एक महीने बाद आते हैं मगर
1: मैडम जी दो तीन महीने नहीं, मुझे करीब छह महीने हो गए, छह महीने बाद आज जुड़ पाया हूँ। हाँ मैडम।
0: ओ नहीं नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ ना।
1: हाँ मैडम जी, छह महीने हो गए करीब मुझे, क्योंकि मुझे लाइन ही नहीं मिल पाती और मेरा हेयर कटिंग सैलून करने से तो उसमें आपके जब यहाँ रिकॉर्डिंग होती है तब मेरा काम रहता है दुकान में, तो फिर मैं रह जाता हूँ। आज थोड़ा समय मिला, कोशिश कामयाब हो गई
0: मतलब
1: मेरी।
0: आज थोड़ा क्या हेयर कटिंग करने में कोई नहीं आया ना, इसीलिए फोन किया।
1: हाँ थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा बिजनेस काम है अभी।
0: मतलब अभी भी इतना हेयर कटिंग कराने के लिए बहुत आते ना लड़का लोग का, तो सैलून होंगे ना आपका?
1: बिल्कुल बिल्कुल, जेंट्स का सैलून है हमारा।
0: हेयर कटिंग करते क्या है, दाढ़ी मूछ भी बनाते है ना?
1: हाँ वो सब सभी ऑलराउंडर काम है अपने पास। और हमारा तो क्या है,
0: थोड़ा मसाज भी देते हैं।
1: हाँ मसाज भी करते हैं, और हमारा तो सबको मेकअप के तैयार करने का काम, सुंदर बनाने का काम है हमारा तो।
0: तब तो फिर तो आप तो और भी सुंदर होंगे ना।
1: अरे मैडम जी हमारा तो बिल्कुल संजय दत्त जैसे बाल है बिल्कुल।
0: अरे बाप रे, संजय दत्त जैसे बाल। मगर हे आप सच्चे मन का
1: बिल्कुल, और ये तो सभी आपके आकाशवाणी से मतलब मेरे को जुड़े हुए करीब चार साल हो गए हैं, और चार साल से मुझे सभी मित्रों की उसको सुनते हैं।
0: जी जी जी।
1: और अच्छा सभी जितने भी मित्र आपके यहाँ फोन लगाते हैं सभी में प्यार मोहब्बत बना रहता है
0: जी। मगर
1: और एक
0: बात
1: के जी जी,
0: एक बात आज पता चल गया सभी श्रोताओं को, मतलब जितने आप लोग का दोस्त लोग बन चुके हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ से, सब लोग को एक बात पता चल गया कि आप संजय दत्त जी से हेयर कट रखते
1: हैं। जी जी जी जी जी बिल्कुल, और ये तो सभी आकाशवाणी के जितने भी दोस्त हैं आपके यहाँ फोन लगाते हैं सभी से हमारा टेलीफोन के माध्यम से भी संपर्क बना रहता है, प्यार मोहब्बत बनी रहती है, और सभी में ऐसा ही प्यार बना रहे आपके आकाशवाणी से जितने भी मित्र जुड़ते हैं।
0: जी जी जी, अच्छा लगा। तो बताइए गाना कौन सा सुनाए?
1: गाना मैडम जी आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का, इसमें गाना है टिप टिप टिप टिप बारिश शुरू हो गई, और यह हमारे एक दोस्त का बहुत ही पसंदीदा गीत है जो आपके यहाँ फोन लगाते हैं, अनु कुमार जी का सबसे पसंदीदा गाना है ये।
0: अरे बाप रे।
1: जी मैडम, और भी हमारे मित्र है, भगवान सिंह जी भी हैं, अविनाश जी भी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं, गौतम जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, गंगाधर जी हैं, योगेश जी हैं, और राम बाबू मालवीय जी हैं, सुनील झा जी हैं, और ऐसे तो मेरे आकाशवाणी में बहुत ही चाहने वाले मित्र हैं, सभी के लिए रहेगा और आकाशवाणी गंतोक के लिए भी यह गीत रहेगा। टिप टिप टिप टिप बारिश शुरू।

0: सुनी कंतुक
1: आदरणीय पूनम जी, सादर नमस्कार।
0: सादर नमस्कार
1: जी। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। पूनम जी, आप बताएं, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, अच्छा चल रहा है सब। आप बताते हैं, स्वस्थ मस्त खुश?
1: संगीत और गीत से जो व्यक्ति जुड़ा रहता है वो संगीत और गीत में ही मस्त रहता है, और जो मस्त रहेगा वो स्वस्थ रहेगा।
0: स्वस्थ रहेगा, ये तो है। शास्त्र जी, आप लोग के यहाँ पर मतलब भगवान तो एक ही है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सा भगवान को ज्यादा मानते हैं मथुरा में?
1: मथुरा में तो वैसे सभी देवी देवताओं के देवालय बने हुए हैं, और लेकिन भगवान कृष्ण और देवों के देव महादेव को और दुर्गा माता को सबसे ज्यादा अहमियत और महत्व दिया जाता है। इनकी आराधना स्तुति वंदना सबसे ज्यादा होती है। इनके देवालय भी मंदिर भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं। और पूनम जी, आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देवों के देव महादेव जो हैं वो मथुरा के कोतवाल यानी क्षेत्रपाल कहलाते हैं, जिनके नाम है कामेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और ये चक्रेश्वर महादेव
0: जी।
1: ये जो देव हैं आशीष्वर महादेव, ये सब मथुरा के कोतवाल या क्षेत्रपाल कहलाते हैं। ये काफी युगों से यहाँ पर विराजमान हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी। तो कृष्ण जी को भी ज्यादा मानते हैं? आप क्या बोलते हैं, फोन करते राधे राधे बोलते हैं ना आप? तो
1: जी, यहाँ पर सभी लोग नमस्कार की वजह राधे राधे कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
0: जी जी, नमस्ते की नमस्ते जी, नहीं बोलते राधे राधे बोलते हैं।
1: हाँ, राधे राधे बोलते हैं। जब मिलेंगे तो भी बोलेंगे राधे राधे, और जब जाने लगेंगे तो भी राधे राधे
0: अच्छा लगा थोड़ा हमारे कार्यक्रम हैलोश्रोता की मार्फत से थोड़ा आपके यहाँ पर वृंदावन भी घुमाए हम।
1: जी जी, आपका स्वागत है। अपने तो फोन के माध्यम से थोड़ा हल्का सा परिचय दिए, वैसे मैं विस्तार से बताने लगूंगा तो काफी समय हो जाएगा,
0: काफी समय कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा वृंदावन के बारे में भी थोड़ा जान गए तो ये भी अच्छा लगा। तो बताइए, इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए आज?
1: पूनम जी, क्या है कि हमारे मथुरा वृंदावन में आकाश में बादल छाए हुए हैं, मंद मंद शीतल पवन प्रवाहित हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम आज बन गया है, और ऐसे खूबसूरत मौसम में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है लगान और गीत के बोल हैं, काले मेघा पानी तो बरसा। श्रोताओं को यदि शामिल करना चाहते हैं तो सर्वश्री पूनम जी को याद करता हूँ आकाशवाणी गंगटोक से। अर्जुन प्रधान जी हैं गंगटोक से, और आशुतोष जी, अविनाश जी, संगीता जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं और राकेश कुमार जी हैं। इन सभी दोस्तों के साथ साथ मैं तेज चंद्र अग्रवाल को भी याद करना चाहता हूं, सतीश रघुवंशी जो छिंदवाड़ा से हैं।
0: नमस्कार।

हजुर श्रोता, यतिन्जेल प्रस्तुत थियो कार्यक्रम सुर संसार अन्तर्गत उस्ताद अमजद अली खाँद्वारा सरोदवादन। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं।

0: एशनमा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ समाचार प्रिपाइकेशन प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देशभर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रूपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रूपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रूपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।

0: होगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष

0: महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपये पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवीन्द्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और डीआर कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देशभर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा।

0: 18 वर्ष एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल

0: तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूं सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़ी मॉडल।

0: के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया है।
1: तो सुन जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया उसके ऊपर, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रूपये का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहां ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
0: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव

0: है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म। हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूज दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन। वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबल चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं। हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर। तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गए। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमीकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक्स सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूजन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम।
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
0: ये जो पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर उसको सेक्टर से हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
0: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोगों को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन्स या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्रीस्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
0: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग, तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
5: चर्चा का विषय है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
7: मीडियम वेव 213.67 मीटर को 1404 किलोहर्ट्जमा यो आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र हो। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन